सॉरी सर, वो बॉटल जिस पे भी रुकती है उसे गाना पड़ता है, बट इट्स ओके। आप

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-20-670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।